0: नाले गर्मात गल्ला करे कनेरियां खसना पाए सा आप कोई सेवा करे ता किस पाए मान ना किसम लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
1: जो जी होए सो गवे मौका कयाबा बीजे बिक मंगे अमृत वे कोई उन्या महला दूजा
2: नाले आने दोस्ती कदे ना वेरास जे आ जाने ते होर ते वे खुपन मिल जास वस्तुवान रसवान जो जो होए पास साहिब सिद्धि को न चले कई बड़े अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होए नानक सिफत वास।

सैदा सैदा बल्ले आरे तो दिया गे आरे दासे हमारी वाहिगुरु तो दिया गे आरे दासे हमारी वाहिगुरु जियो पेंडे सब तेरा जियो पेंडे सब तेरा सचिया पाए दिशा जियो पेंडे सब तेरा कहुना नक सब

दिल्ली में शीशगंज रकाबगंज वाला साहेब बंगला साहेब सतो टंडिया साहेबा दी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बलारे।

तर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्ते स्वयं वसव सर्वदा सतयुक्ते कालम प्रणासी दयाल स्वरूपे सदा अंग संगे अंगंग भूते देख देख गोप तैम सुत बेदरम ज्ञाप दल नान कुर गोविंद सिंह से अकाल पुरी सहाय दरबार में तेरो दरबार शक्ति में से निरंकार लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबार।

एक श्री छंद अजय अलह भय भय भू अजू अनाश कास अगंज अभंज अलख अभख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम काम गाह डाह अनाथे प्रमाथे अजू।

सदा सच्चिदान सतरंग प्रणासी करी मुल्क निंदा समस्त निवासी अजायब भूते गजायब गनी में हरि अंकारि अंकारि मूल रही में चात्र चक्रवर्ती चात्र भुगते स्वयं भाव भंग सर्व।

ਉਤਾਰ ਖਾਸੇ ਦਸਖਤ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਰੱਛਾ ਹਮਨੈ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੀ ਰੱਛਿਆ ਹਮਨੈ ਸਰਬ ਕਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰੱਛਿਆ ਹਮਨੈ ਸਰਬ ਲੋਹ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਛਿਆ ਹਮਨੈ ਆਗਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕੇ ਦਸਖਤ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੌਪਈ ਪ੍ਰਣਵੋ ਆਦੇ ਕੰਕਾਰਾ ਜਲ ਥਲ ਮਹਿਲ ਕੀਓ ਪਸਾਰਾ ਆਦ ਪੁਰਗ ਅਵਗਤ ਅਵਨਾਸੀ ਲੋਕ ਚਤਰ ਦਸ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸੀ ਹਸਤ ਕੀਟ ਕੇ ਬੀਤ ਸਮਾਨਾ ਰਾਵ ਰੰਗ ਜੈ ਇਕ ਸਰ ਜਾਨਾ ਅਦਵੈ ਅਲਖ ਪੁਰਗ ਅਵਗਾਮੀ ਸਭ ਖਟ ਖਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਅਲਖ ਰੂਪ ਅਛੈ ਅਨਭੇਖਾ ਰਾਗ ਰੰਗ ਜਹ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਾ ਬਰਨ ਚਹਿਨ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਆਦ ਪੁਰਗ ਅਦਵੈ ਅਭਿਕਾਰਾ ਬਰਨ ਚਹਿਨ ਜੈ ਜਾਤ ਨ ਪਾਤਾ ਸਤਰਮੁਤਰ ਜੈ ਤਾਤ ਨਾ ਮਾਤਾ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਬੰਤੇ ਨੇਰਾ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਜਾਹੇ ਬਸੇਰਾ ਅਨਹਦ ਰੂਪ ਅਨਾਹਦ ਬਾਨੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜੈ ਬਸਤ ਭਵਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਨੇਤ ਨੇਤ ਮੁਗ ਚਾਰ ਬਤਾਇਓ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਉਪਿੰਦਰ ਬਨਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੁਦਰ ਉਪਾਏ ਖਪਾਏ ਲੋਕ ਚਤਰ ਦਤ ਖੇਲ ਰਚਾਇਓ ਬਹਰ ਆਪ ਹੀ ਬੀਚ ਮਿਲਾਇਓ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਅਪਾਰਾ ਗੰਧਰਵ ਜਛ ਰਚੈ ਸੁਭਚਾਰਾ ਭੂਤ ਭਵਿਕ ਭਵਨ ਕਹਾਣੀ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨੀ ਤਾਤਮਾ ਜੈ ਜਾਤ ਨ ਪਾਤਾ ਏਕ ਰੰਗ ਕਾ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਤਾ ਸਰਵ ਜੋਤ ਕੇ ਬੀਚ ਸਮਾਨਾ ਸਭ ਹੂੰ ਸਰਵ ਠਾਰ ਪਹਿਚਾਨਾ ਕਾਲ ਰਹਤ ਅਨਕਾਲ ਸਰੂਪਾ ਅਲਗ ਪੁਰਖ ਅਵਗਤ ਅਵਧੂਤਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਹ ਚਿਹਨਾ ਬਰਨਾ ਅਵਗਤ ਦੇ ਅਛੈ ਅਨਭਰਮਾ ਸਭ ਕੋ ਕਾਲ ਸਵਨ ਕੋ ਕਰਤਾ ਰੋਗ ਸੋਗ ਲੋਕਨ ਕੋ ਹਰਤਾ ਏਕ ਚੇਤ ਜਹ ਇਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਬਿਤ ਕਤ ਹੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ ਕਤ ਹੂੰ ਅਚਿੰਤ ਹੋਏ ਕੇ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤ ਹੋ ਕਤ ਹੂੰ ਭਿਕਾਰੀ ਹੋਏ ਕੇ ਮੰਗਤ ਫਿਰਤ ਭੀਕ ਕਹੂੰ ਮਾ ਦਾਨ ਹੋਏ ਕੇ ਮੰਗਿਓ ਧਨ ਦੇਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਮਾ ਰਾਜਨ ਕੋ ਦੀਜਤ ਅਨੰਦਾਨ ਕਹੂੰ ਮਾ ਰਾਜਨ ਦੇ ਛੀਨ ਛੇਤ ਲੇਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਬੇਦਰੀਤ ਕਹੂੰ ਤਸ ਬਿਪਰੀਤ ਕਹੂੰ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਕਹੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਜਜ ਗੰਧਰਵ ਉਰਗ ਕਹੂੰ ਵਿਦਿਆਧਰ ਕਹੂੰ ਭੈ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਹੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਹੋਏ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆ ਗਾਇਤਰੀ ਕੋ ਗੁਪ ਜਪਿਓ ਕਹੂੰ ਹੋਏ ਕੇ ਤੁਰ ਕਾ ਪੁਕਾਰੇ ਬਾਂਗ ਦੇਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਕੋਪ ਕਾ ਹੋਏ ਕੇ ਪੁਰਾਨ ਕੋ ਪੜਤ ਮਤ ਕਤ ਹੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਨਿਦਾਨ ਜਾਣ ਲੇਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਬੇਦਰੀਤ ਕਹੂੰ ਤਸ ਬਿਪਰੀਤ ਕਹੂੰ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਕਹੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਦੇਵਤਾਨ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ ਮਿਰਾਜਮਾਨ ਕਹੂੰ ਦਾਨਵਾਨ ਕੋ ਗੁਮਾਨ ਮਤ ਦੇਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਕੋ ਮਿਲਤ ਇੰਦਰ ਪਦਵੀ ਸੀ ਕਹੂੰ ਇੰਦਰ ਪਦਵੀ ਛਿਪਾਏ ਛੀਨ ਲੇਤ ਹੋ ਕਤ ਹੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰਤ ਕੋ ਵਿਚਾਰਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਨਿਜ ਨਾਰ ਪਰ ਨਾਰ ਕੇ ਨਿਕੇਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਬੇਦਰੀਤ ਕਹੂੰ ਤਸ ਬਿਪਰੀਤ ਕਹੂੰ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਕਹੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਸ਼ਸਤ੍ਰਧਾਰੀ ਕਹੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹੂੰ ਮਾਰਤ ਹਾਰੀ ਕਹੂੰ ਨਾਰ ਕੇ ਨਿਕੇਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਦੇਵ ਬਾਨੀ ਕਹੂੰ ਸਾਰਦਾ ਭਵਾਨੀ ਕਹੂੰ ਮੰਗਲਾ ਮਿਡਾਨੀ ਕਹੂੰ ਸਿਆਮ ਕਹੂੰ ਸੇਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਧਰਮ ਧਾਮੀ ਕਹੂੰ ਸਰਵ ਠੌਰ ਕਾਮੀ ਕਹੂੰ ਜਤੀ ਕਹੂੰ ਕਾਮੀ ਕਹੂੰ ਦੇਤ ਕਹੂੰ ਲੇਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਬੇਦਰੀਤ ਕਹੂੰ ਤਸ ਬਿਪਰੀਤ ਕਹੂੰ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਕਹੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਜਟਾਧਾਰੀ ਕਹੂੰ ਕੰਠੀ ਧਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹੂੰ ਜੋਗ ਸਾਧੀ ਕਹੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਕਾਨ ਫਾਰੇ ਕਹੂੰ ਡੰਡੀ ਹੋਏ ਪਤਾਰੇ ਕਹੂੰ ਫੂਕ ਫੂਕ ਪਾਵਨ ਕੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪੈ ਧਰਤ ਹੋ ਕਤ ਹੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧਤ ਸਿਲਾਹਨ ਕਹੋ ਕਹੂੰ ਛਤਰੀ ਹੋਏ ਕੇ ਅਰ ਮਾਰਤ ਮਰਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਭੂਮ ਭਾਰ ਕੋ ਉਤਾਰਤ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੂੰ ਭਾਵ ਭੂਤਨ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਤ ਹੋ ਕਹੂੰ ਗੀਤਨਾਦ ਕੇ ਨਿਧਾਨ ਕੋ ਬਤਾਵਤ ਕਹੂੰ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰੀ ਕਹੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੇ ਨਿਧਾਨ ਹੋ ਕਤ ਹੂੰ ਪਯੁਗ ਹੋਏ ਕੇ ਪੀਵਤ ਪੀਵਾਵਤ ਹੋ ਕਤ ਹੂੰ ਮਯੁਗ ਕਹੂੰ ਮਦ ਪਾਨ ਹੋ
कहूँ माँ सुर हो के मारत मवासन को कहूँ माँ देव देवतान के समान हो कहूँ माँ दीन कहूँ द्रव के अधीन कहूँ विद्या में प्रवीण कहूँ भूम कहूँ भान हो कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंक कहूँ पूरन प्रजंक कहूँ शुद्धता की सार हो कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम कहूँ कुतस कुकरम कहूँ धर्म के प्रकार हो कहूँ पवन हरि कहूँ विद्या के विचारी कहूँ जोगी जाति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो कहूँ छत्रधारी कहूँ छालाधर छाल भारी कहूँ छक भारी कहूँ छल के प्रकार हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजाय कहूँ धे नृत्य के नचे कहूँ नर को आकार हो कहूँ वेद बानी कहूँ कोक की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो कहूँ बेन के बजैया कहूँ धेन के चरैया कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो शोधता किसानों के संतन के प्राणों के दाता महादानों के निर्दोषी निरंकार हो निर्जोर निरूपों के सुंदर स्वरूपों के भूपन के भूपों के दाता महादान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिव्या रोग शोक के मिटैया की तो मानी महामान हो विद्या के विचार हो के अद्वैय अवतार हो के शुद्धता की सूरतों की शुद्धता की शान हो जोबन के जाल हो के काल हो के कालों के सतरन के सूलों के मित्रन के प्राण हो कहूँ ब्रह्मवाद कहूँ विद्या को विखाद कहूँ नाद को ननाद कहूँ पूरन भगत हो कहूँ बेदरीद कहूँ विद्या की प्रतीत कहूँ नीत अनीत कहूँ जालासी जगत हो पूरन प्रताप कहूँ एकांति को जाप कहूँ ताप को अताप कहूँ जोग तैगत हो कहूँ बार देत कहूँ छल सिंह छिनाएले सर्व काल सर्व ठार एक से लगत हो तो प्रसाद सवैये श्रावक सोच समूह सिद्धान के देख फ्री उघर जोग जति के सूर सुराधन सोच सुधारिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखत प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा हूते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पवन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भू बजीव न्यावशीष न जात बिचारे एते भय तो कांप है भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजे ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे भूत भविक भगवान के भूपत कान के नीनी जाद विचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बेन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ धान दे आदम दास संजम ने अनेक विशेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान समान के पेख है पौन हार जति जधार सब सो विचार हजारक देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सोध सुपा तुरंत वासो सासना दुर्जान दलांगे भारी घुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरिन मरोर मवासन माते के जहाँ माते मतंगन मान मलाएंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहाँ निदान चलाएंगे वीर पार बड़े बरियार विचारे सार की धार भछैया तोर देश मलिन मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हरसो बातन ही चक चार लवैया साहेब श्री सबको सिर नाय जाचन एक सो एक दिवैया दानव देव फनि निशाचर भूत भवेक भगवान जपेंगे जीव जीते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपाएंगे पुन प्रतापन बाढ़ जाय धुन पापन के बहु पुंज खपाएंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब लोग छपेंगे मानो इंद्र गजेंद्र नराधिम जयंत लोग को राज करेंगे कोट स्नान के जातिक दाने स्वयंवर साज परेंगे ब्रह्म ऐसर विचन अति पदंत फसे जम फांस परेंगे जे नर श्रीपद के प्रस है पग ते नर फेर ना देह धरेंगे कहा भयो जो दोलोचन मूंद के बैठ रहे हो बग ध्यान लगायो नाथ प्रिय लिए सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो बास की ओ बिखियान सो बैठ के ऐसे सो बैठ बितायो साचे कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तेन ही प्रभ पायो काहू ले बाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हरावाची दिशा में है काहू पछाहो को शीश निवायो को उपतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन धायो
पूर्गिरी और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। तो प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन द चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अनछेद तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृत भान द चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक शोक विदार कल काल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थापि हो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुखचार गावत वेद जय नेद निगम कहंत मुखचार वकत बेअंत अनभिज अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय कीन जगत पसार रचो विचार विचार अनंत रूपा खंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मंड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार कई ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिन नगेंद्र कई माच्छ काच्छ फनेंद्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण विषण अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद अमुखचार कई रुद्र क्षुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोप का भणंत कई भेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत वखान कौ कतत हिसो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द भाव संन्यास कौ जोग भेद उदास कौ नीली गरम करंत कौ पवन हार दुरंत कहु तीरा दान अपार कहु जाग करम उदार कहु अगन होत्र अनूप कई न्याय राज विभूत कहु शास्त्र सिमरत रीत कहु वेद स्यों विपरीत कई देह देश फिरंत कई एक ठौर स्थंत कहु कर जल में जाप कहु सा तन प्रताप कहु बाल बने करंत कहु ताप तने सहंत कहु ग्रह धर्म अपार कहु राज रीत उदार कहु रोग रहत अभरम कहु कर्म करत अकर्म कहूँ शेख ब्रह्म स्वरूप कहूँ नीत राज अनूप कहूँ रोग शोक विहीन कहूँ एक भगत अधीन कहूँ रंग राजकुमार कहूँ वेद व्यास अवतार कई ब्रह्म वेद रटंत कई शेख नाम उचरंत बैराग कहूँ संन्यास कहूँ फिरत रूप उदास सब कर्म फोकट जान सब धर्म नह फल मान बिन एक नाम आधार सब कर्म भरम विचार। तो प्रसाद लगुन राज छंद जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि चिते हरि नभे हरि इहा हरि वहा हरि जिमी हरि जमा हरि अलेख हरि अभे हरि अधोख हरि अद्वैख हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजाद हरि अपाद हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अडंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अछेव हरि भजो हरि तपो हरि जपो हरि जलस्तुई थलस्तुई नदीस्तुई नदस्तुई वृक्षस्तुई पतस्तुई छितस्तुई ऊर्धस्तुई भजस्वंग भजस्वंग रटस्वंग ठटस्वंग जिमी तुई जमा तुई मकी तुई मका तुही अभू तुही अभय तुही अछू तुही अक्षय तुही जतस्तुई व्रतस्तुई गतस्तुई मतस्तु

हुकुम अल हरि गज गद हाबी भूदारी की दुआ मसान बास करो ही करते हैं। घुगू मठ वासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदी मोन सादे ही मरते हैं। बिंद के सदैया ता हीज की बटैया दे बंदरा सदी पाए नंगे ही फिरते हैं। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरते हैं। भूत बन चारी छे छौना सभ्य दूधा धारी पौन के हारी सो भुजंग जानी आते है। तृण के भछैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रग भैया मानी आते है। नव के उड़ैया ताए पंछी की बडैया देत बगला बिडाल ब्रग ध्यानी ठानी आते है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पै बखानी ना हे ऐसे ना प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताए भूचरी के जैया कह नव के उड़ैया सो चिरैया कह बखानी है। फल के भचैया ताए बांदरी के जैया कह आदेश फिरैया ते तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आखे भचैया सो चकोर समानी है। सूरज सिवैता कौल की बिटाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कच्छ मच्छ तेंदुआ कह सब कौल नाव कौल जय ताल में रहते हैं। गोपीनाथ गुजर गोपाल सबे धेन जारी रिखी के सनाम के महंत लही आते हैं। माधव भवर औ अटेर को कन्हैया नाम कंस को बतैया जाम दूध कही आते हैं। मूड रूट पीटत ना गूढ़ता को भेद पावे पूजत ना ताहे जाके राखे रही आते हैं। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल भैरी साल सदा प्रतपाल जम जालते रहते हैं। जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्या दे पै सहते हैं। निवलिकरम जल होम पावक पवन होम अधोक मो एक पाए ठंडे ना बहते हैं। मानो फनिन देव दानो ना पावे भेद भेद औकतेव नेत नेत का कहते हैं। नाचत फिरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करे वही करते हैं। चंद्रमा ते शीतल ना सूरत तपत तेज इंद्र सोना राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से ना वेद चारी सनत कुमार सी तपस्या ना अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराए फिरत है। एक शिव भय एक गाय एक फेर भय रामचंद्र किशन के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के ते वेद और पुराण के ते सिमरन समोहन के होए होए बिताए हैं। मोंदी मदार के ते अशनी कुमार के ते अंसावतार के ते कालबद्ध भय है। पीरो पिकाम्बर के ते गणेना परते ते भूमि ते होके फिर भूमि ही मिलाए हैं। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरा दे बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से मही पाओ दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मान धारी भोग भोग भूबंध भूम में मिलत है। सेजते करे अनेक तोप जी कपट भेद पोसी अनेकता निभावत है शीश को। कहा भयो मल जो पे काटते अनेक दंड सोतन डाउत अष्टांग तीस को। कहा भयो रोगी जपे डारे रहे उर्दमोग मनते ना मुड़ने हरायो आदिश को। कामना दीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीश पलट कत जाके कान में खजूरा दसे मूड छटकत मित्र पुत्रों के शोक सो। आग को चरया फल फूल को भजे सदा बन को भ्रमय और दूसरों ना भोग सो। कहा भयो भेड़ जो घसा शीर वृक्षन सो माटी को भसैया बोल पूज लीजा जोग सो। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेटे पर लोग सो। नाचोई करत मोर दादर करत सोर सदा घन घोर घन करे वही करत है। एक पाए ठाटे सदा बन में राज ब्रेच फूक फूक पांव भूत रावक धरत है। पाहना एक जुग एक ठौर बास करे काग और चील देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महदान में न हुजलिन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे के स्वांगी कहूं जो गया बैरागी बने कब हूं सन्यास भेद बन कर दिखा भई। कहूं पौन हरि कहूं बैठे लाए तारी कहूं लोभ की खुमारी सौ अनेक गुण गा भई। कहूं ब्रह्मचारी कहूं हाथ पे लगावे वारी कहूं दंड धारी के लोगन भ्रमावई। कामना अधीन परे नाचते नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे भ्रम लोग पावई। पांच बार गीदर पुकार परे शीत काल कुंचर गदहान एकदा पुकार ही। कहा भयो जो पे कलवत्र लियो कांसी भी चीर चीर चोरठा कुठारन सो मार ही। कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंग डार डार डार फांस ठग मार मार डार ही।
डूबे नरक धार मोड़ ज्ञान के बिना विचार भावना भीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहते जो पाइये तापना तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए तो जाइए पता जाप के किए तो जो पे पाइयत अजाप देव कूदना सदी तू ही उचरत है नभ के उड़े ते जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है आग में जरते गत रांड की परत कर पताल के वासी की भुजंगना तरत है को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनमान बो हिंदू तुरको राव जी माम सभी मानस की जा सब के पहचान बो करता करीम सोई राजक रहीम होई दूसरों ना भेद कोई भूल भ्रम मान बो एक ही की सेव सब ही को गुरु देव एक ही स्वरूप सब के जो जान बो देहोरा वसी सोई पूजा होनी वाजो मान सब एक पे अनेक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नैन एक कान एक दे के बान खाक बात आपको रलाव है अल्लाह भेग सोई पुरानो कुरानो एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है जैसे आगते कनु का गोड आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे जैसे एक नत्ते तरंग को डूब जाते पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते पर सब ताही में समाहेंगे केते कच्छ मच्छ केते उन को करत भच्छ केते अच्छ वच्छ होए सपज ओढ़ जाएंगे केते नबी जाज पज को करेंगे भच्छ केतक प्रत्यक्ष होए बचाए खाए जाएंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे तेज युवा तेज में अतेज ऐसे तेज लीन ताही ते ऊपर सब ताही में समाहेंगे कुकत फिरत केते रोवत मरत केते जल में डुबत केते आग में जरत है केते गंगवासी केते मदीना मक्का निवासी केतक उदासी की भरमाए फिरत है करब सहत केते भूम में गड़त केते सुहा पे चढ़त केते दुख भरत है गैन में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है शोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चोआ चार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मट लीप हारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंदरा बजा हरे किन्नर सब पज हारे पंडित तपंत हारे तापसी ता प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना क्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भर्मंग ना जन्मंग ना जातंग ना मित्रंग ना सतरंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सतरंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजूनी स्वरूपंग सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध रूपंग नहीं जान जाई कछु रूप रेखंग कहा वास्ता को फिरे कौन भेखंग कहा नाम ताको कहा कह कहा वह कहा कह बखानो कह मैं न आवे ना रोग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग आद वैखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेंग परापरम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछयाद अद्वै अविनाशी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय सारे गड़े फेर मेटे बनाए अगाधे अभय आद अद्वै अविनाशी परेंग परापरम पूरण प्रकाशी ना आदंग ना व्यादंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रताप आद अच्छा विभूते ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ना नेहंग ना गेहंग सनेहंग सनाते दंडे मंडे प्रचंडे प्रमाथे ना जाते ना पाते ना सत्रे ना बितरे सो भूते भविके भवाने अचित्रे ना रायंग ना रंकंग ना रूपंग ना रेखंग ना लोभंग ना चोभंग भूतंग अभेकंग ना सत्रंग ना वितरंग ना नेहंग ना गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग ना कामंग ना क्रोधंग ना लोभंग ना मोहंग अजोनी अछे आदत व्य अजोहंग ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्याधंग ना रोगंग ना सोगंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग ना तातंग ना मातंग ना जातंग ना कायंग ना नेहंग ना गेहना भरमंगना भयंग
ना रूपंग ना भूपंग ना काय ना कर्मंग ना त्रासंग ना प्रासंग ना भेदंग ना भरमंग सदैवंग सदा सिद्ध वृद्धंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभा अनुक्तंग प्रतापे अयुक्तंग अच्छे आदित्य अथापे विभुक्तंग अच्छे आदच्छे स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे ना नेहंग ना गेहंग ना शोकंग ना साकंग परे अंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग ना जातंग ना पातंग ना मित्रंग ना मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे ना धर्मंग ना भरमंग ना सर्वंग ना साके ना भरमंग ना चरमंग ना कर्मंग ना बाके ना सत्रंग ना मित्रंग ना पुत्रंग स्वरूपे नमो आज रूपे कहूं कंज के मंज के भरम फूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाज तांबे कहूं अक्षर के पक्षर के सिर साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चेतर रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं ने गृह कहूं दे दोखं अखदि रोग के शोक शोकं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जाछ गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी प्रसाद की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतंग कहूं भूम की भुगत मैं भरम भुगतंग कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जल विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ट कन्या कहूं वेद विद्या कहूं बेवानी कहूं कोप की काव कथा कहानी कहूं उदर सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र वाणी कहूं छद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं वैठ गुरान के गीत गावे कहूं सोत से कहूं ब्रह्म धर्मंग कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मंग कहूं ज्वाल स्वरूपंग जरारा देहंग कहूं ने देहंग कहूं त्याग गृहंग कहूं जोग भोगंग कहूं रोग रागंग कहूं रोग हरता कहूं भोग त्यागंग कहूं राज साजंग कहूं राज रीतंग कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतंग कहूं आरवी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देद भाग्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतंग कहूं शस्त्र धारंग कहूं ओम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतंग कहूं मलेर भाग्या कहूं वेद रीतंग कहूं नृत्य विद्या कहूं नाग बानी कहूं गार डुगुण कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूं छैल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजंग धीराजा अधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी अछे आदत व विधाता न त्रस्तंग न ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग तू अस्तंग अभूते तब प्रसाद पादरी छंद अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप अनाश अन तुट तेज अन खुड भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकार अनभूते अन छेद गाद करता सदी हरता सनात आसन डोल अनभूत कर्म दाता दयाल अनभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भार नहीं मित्र मान जय कर्म भरम नहीं धर्म ध्यान जय ने व्योधमान जय जात पार नहीं सत्र मित्र जय ने चैन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेग जय जन्म जात नहीं भरम फेक जय कर्म भरम नहीं जात पात नहीं ने गे नहीं पितृ मान जय नाम साम नहीं बरग ब्याह जय रोग शोक नहीं सत्र साज जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आद नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो नांग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जय नेत ने उचरंत बे जय अलग रूप कथत कतेब जय अलग रूप आसन डोल जय मित तेज अक्षय तोल जय ध्यान काज मुंजन आनंद कई कलप एक साधन तुरंत तन सीत गां बरखा संत कई कलप एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधन तथा पावत न पार कई उर्द्वादेशन प्रबंध कई उर्द्वमत पावक झुलंत कई सिमरे शास्त्र उच्चरंत वेद कई कोप काव कथत कतेव कई अग्न होत्र कई पौन हार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साग पे पत्र भाष्य नहीं तथा देह होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद री जग आदि कर्म कहूं अग्न होत्र कहूं तीरा धर्म
कई देद देद भाखा रटंत कई देद देद विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नायकताज पायत न पार कई तीरत तीरत भरम सो भरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदप ताज पायत न पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धर्म कहूँ सिमरे शास्त्र सो करम निवली आदि कर्म हस्तदान कहूँ अश्वेद मको बखान कहूँ करत भ्रम विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जज गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमरे।

कई जपत और लटकंत जाम कई जपत यो कल्पंग प्रजंत नहीं तद तास पायत न अंत कई करत कोड विद्या विशा नहीं तदव देश देखे मुरार बिन भगत सगर नहीं परत पान भो करत होम अर जगदान बिन एक नाम एक चेतलीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन तो तोटक छंद जय जंप हो जुगण जुअज वंग भय कंप हो मेरे पयाल भुवंग तप ताप सर्व जले रुथलंग धन उचर इंद्र कुमेर बलंग अन खेद सरुवा भेद भयंग अन खंड भूत छेद छियंग अन काले अपाल दयाल सुंग जय ठटियर मेर काज भुवंग अन खंड अमंड प्रचंग नरंग जय रचंग देव देव बरंग सब कीनी दीन जिमीन जमा जय रचंग सरम मकीन मका जय रागना रूपना रेग रुखंग जय तापना सपना शोक सुखंग जय रोगना शोकना भोग भुवंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेग न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दो गण जय अंडा ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नौ खंड सचयो रस्ताम तेज अतेज कियो अनुभव पदा प्रचंड लियो से सिंदर बिंद न गिंद न गंग से जाच गंधर फणिंद भुजंग रच देव देव न अभेव न रंग नरपाल निरपाल कराल त्रिगंग कई कीड पतंग भुजंग नरंग राज अंडा सेतज उद भुजंग किए देव देव सराज पितंग अन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जातना पातना जो जुतंग जय तातना मातना भ्रात सुतंग जय रोगना सोगना भोग भुवंग जय जंपय किन्नर जा झुवंग नर नार नपुंसक जाय किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाज रथाधिक पांच गणग भूत भविक भवान तुअंग जय अंडज सेतज रेज रजंग रज भूम काल ताल जलंग रज पाव पवन प्रचंड बली बन जास की ओ फल फूल कली भो मेरा का निवास छितंग रज रोज का चंद्र वृतंग दुध चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पान प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुराचार रचे नर गंधर्व देव अदेव सचे अन धूत अभूत अछूत मतंग अन गाद अभ्याद नाद गतंग अन खेद अभेद अछेद नरंग जय चा चतर चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुखंग जय शोक न भोग न जोग जुवंग भो भंजन गंजन आशिरंग जय बंद देव अदेव नरंग गण किन्नर जज भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन घंज वृतंग जय पार न पावर पूर्व मतंग अन खंड सरुवा दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव आनंद कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपै सुत सिंध अदो मुख ताप तपै कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नह कृपा निध पान परे जय फोकर धर्म सब तज है एक चैत कृपा निध को जप है तिव या भव सागर कोतर है भव भूल न दे पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोड वृति इम वेद उचार सार सुति जो वारस के चस के रस है ते भूलना काल फंदा फस है तो प्रसाद नाराज छंद अगंज याद देव है भंज भंज जानिए भूत भूत है सदा गंज गंज मानिए अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अच्छे तेज बानिए सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अधोक दाग तक है भूत भ्रम भेक है न तात्मात जात है न पाच्यन भरण है अधेक असेक अभेक है सदीव विश्व भरण है विश्वम्बर विश्वनाथ विषेक विश्व भरण है जमीजमान के विकह सदीव गर्म भ्रम है अद्वैक अभेक अलेख न जानिए सदीव सर्व ठौर में अभिषेक आन मानिए न जंत्रमय न तंत्रमय न मंत्र बस आवई पुराण अकुरान नेत नेत कह बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताइए अगंज आ देव है कह सुख पाइये जिमी जमान के बिखर समस्त एक जोत है न घाट है न बाढ़ है न घाड़ बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन अमकान अपरमान तेज मानिए
ना देह है ना गेह है ना जात है ना पात है ना मंत्र है ना मित्र है ना तात है ना मात है ना अंग।

न तात है न मात है, खाल खंड रूप है, अछेद है, भेद है, न रंग है, न भूप है, पर है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, भंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, पाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साध है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नरको स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र की विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैक है, न भेक है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदयुदयाल रूप है, गंज है, भंज है, भरम है, भूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, भूत अवेग है, बलिया रूप राग रंग है, न द्वैक है, न भेक है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न जत्र चित्र चिहन वर्ण है, व्यंत है, अनंत तेज जानिया, भूम बीज है, सदा छेद तेज मानिया, न आद है, न व्याद है, अगाध रूप लेखिया, दोख है, दाग है, छह प्रताप देखिया, न कर्म है, न भरम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को लाव है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, नंग है, अगंजसी विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोमो कार है, न आद है, न ज्ञान है, न वाद को विचार है, न रंग रूप राप है, न रूप रेख रार है, न रंग राग रूप है, न रूप रेख रार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है, गजाधपि न राधपि करण सेव है, सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्पति विशेखी है, बेंद बेंद बेंद को करंत पाठ पेखी है, अगाधा देव की अनाद बात मानी है, न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सने जानी है, सदयु सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह, तुरंत द्रोह देख अनंत भाँ सोद है, तो प्रसाद रूआ मल छंद रूप रागना रेख रंगना जन्म मरण भीन आदनाद अगाध प्रग सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आद प्रग पार हाथ कीट बिखै वस सब ठौर में निर्धार जात पात न ता जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखै रम्यो जय चक्र चयन न क्षेत्र आदेव दार मुद्र अगार नाद अनंत आद अंत न जानिया बिखा देव तुरंत देव भेव न जाने जय मरम वेद कतेब सनक अवसन केश नंदन पावई न हसेब जाज किन्नर माच मानद मुर्ग उर्ग पार नेत नेत कार ही सी सौ करो मुक्चार सर्व सपत पतार के तर जाप ही जय जाप आदेव गाते अनाद मृत ताप जंत्र मंत्र न वही कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहो विराज धीराज राज प्रवीण जज गंध्र देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैसरंग बिखै विराजे सूद रवि व नाहे गुड़ गौर न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप राज दिवस न मध्य उर्द न भूमकाश अनूप जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीर जात्र न देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सपत पतार के तर जानी है जय ज्योत शेष नाम सहसपन नेत पूरन होत सो सो हटे सब सुर विरोध दानो सर्व गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ पड़त पड़त थके महाकवि गड़द गाढ़ अनंत हार हार कहो सब मिल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पायो लख्यो न सेव कतेब देव दानो मूढ़ मानो जच न जाने जे भूत भवान भूपत आद नाद नाद अगन बाय जले थले में सर्व ठौर निवास दे गे ने सन अभे नाद जीत सर्व गंजन सर्व भजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयालद भेक चक्र चेना बरन जागो जात पात न भेख रूप रेख न रंग जागो राग रूप न रंग सर्व लाग सर्व घाग सर्व ते अन भंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को व्रत पाल दीन बंद दयाल स्वामी आदे अपाल दीन बंद प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार बरन चेन चक्र जागो चक्र चेना कार जात पात न गोत्र गाता रूप रेखना भरण सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरण दुष्ट गंजन शत्रु पंजन परम प्रमाथ दुष्ट अर्ता श्रेष्ठ करता जगत में जय गाथ भूत भव भगवान प्रमाण देव अगंज आदंत ना श्रीपद परम पुर भंज धर्म के अन करम जय कीन तौन प्रसार देव देव गंधर्व किन्नर माच काच अपार भूम का जले थले में मानिए जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र पालक शत्रु खालक दीन दयाल मुकंद अघाट अंडन दुष्ट खंडन काल हुके काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अन काम सर्व

सर्व के निर्भाम सर्व भुक्ता सर्व युक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमरितन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विष्भर्ता आद्रुप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव खंड भूम का जले थले में जप जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जिते जानिए सब विचार आदेव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे से रुद्र मुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सरस सरद कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्र भे मुख चार आद अंतना मत जागो भूत भगवान सात द्वापर तृतीया कल युग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाई है तह पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाज पच्छर पार सो थके महासुर पायो नह पार तो प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उतरियो मसी बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल भी तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है का श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जी तब का मरण है कवन सुर कह नरक को सुगड़ा को मूर्ता कहा तरक अवतरक दोहरा को निंदा जत है कवन कवन पाप का धर्म कवन जोग को भोग है कवन कर्म अब कर्म दोहरा कहो सम का सो कह दम को कह कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मन दोहरा कहा रंग राजा कवन हरक सो कह कवन को रोगी रागी कवन कहो तत मोह तवन दोहरा कवन रेष्ठ को पुष्ट है का श्रेष्ठ को विचार कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश कहाँ चितन की चेष्टा कहाँ छेद का दोहरा कहाँ नेम संयम कहा ज्ञान अज्ञान को रोगी सोगी कवन कहा धर्म की हान दोहरा को सूरा सुंदर कवन कहा जो को सार को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार तो प्रसाद धीरक दीर्भंगी छंद दुर्जन दल दंडन असुर बिहंडन दुष्ट कंदन आदवृत चछरा सुर मारण पते दुसारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छा खंडे तेर टंडे खंड टंडे लखमते जय जय हुसी मै का सुन मर्दन रंभ का प्रदन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उडंडन रूपते चंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विधंसन मैक मथे दानव प्रहारण नरक निवारण अधम उदारण उर्द अधे जय जय होसी मैं कासुर मर्दन रंभ कपर्दन आदृते डावरु डबंक बबर बबंक भुजा फरंक तेज बरंग लंगुड़िया फांदे आयुध बांधे सैर में मर्दन काल सुरंग अष्टाय चमके भूकण दमके अस्थि झमके फुंक फनंग जय जय होसी मैं कासुर मर्दन रंभ कपर्दन दैत चिणंग चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खंड खंडन खून खिते दामनी दमनकण धुजा फरंकण फणी फुंकारण जो जिते सरदार विवरखण दुष्ट प्रकरकण पुष्ट प्रहरकण दुष्ट मथे जय जय होसी मय कासुर मर्दन भूम का तल उर्द अधे दामनी प्रहासन सो छव निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुण गते रक्तासुन आचन ज्योत ब्रह्माचन निर्दय नराचन धर्म वृते सुरोणत अचिंती अनल विंती जो जयंती खड़क धरे जय जय होसी मय कासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगोग निवारण दोष प्रजान श्रेष्ठ उपारण शोध मते फणी अर फुंकारण बाघ बकार मनुज मतंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय होसी मै कासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म धुजे घुमरु घमंकन शास्त्र झमंकन फणियर फुंकारण धर्म धुजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाह शोध सनाय अगमता एक वृते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद कुमार आद वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भृत विनाशन भृत मृत कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे
किंगड़ी प्रसोहन सुर नर बोहन सिंगारोहण पितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन पाय पताल कास अनले संकटी निवारण अधम उदारण तेज प्रकरण तुन दबे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती आद नाद गाद अच्छे संतता समर्पण तरक वितरकण तपत पितावन जपत जीवे जय जय होसी सत प्रकरखण आद अनिल अगाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुन तिरंगन तेज सरे कर कसा उठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके के हरलंगे आद अतंगे क्रूर कथे जय जय हुसी रक्ता रक्तासुर खंडन सोम चक्र निसोम मथे बारज विलोचन प्रीतन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामनी प्रहसे सुख सरण आसे सुब्रे सुभाषे दृष्ट ग्रसे चंचला प्रंगी वेद प्रसंगी ते तुरंगी खंड सुरंग जय जय हुसी मय का सुरवर्धन आद अनाद गाद उर्धंग घंटका विराजे रुणजुन भाजे ब्रह्म बाजे सुन सुरंग को कल सुन लाजे कल्पिक भाजे राजे माधुर दुर्जन दल दज मंथन रिझ सब भज रो रण जय जय होसी मै कासुर मदन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दोष विरोधन रोज अरोधन क्रूर बिते धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रज्वंसन जग विध्वंसन सुध मते जालपा जयंती सत्र मथंती दोष प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हुसी मै कासुर मर्दन आज उगाद गाद गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद नंगी अगाद गते ब्रिड़ लाज बिहंडन चच्छुर दंडन तेज प्रचंडन आद प्रते सुर नर प्रतिपारण प्रतिधारण दोष निवारण धोक हरे जय जय होसी मय का सुर मर्दन विश्व विध्वंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्तर नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दोष प्रधरखण बितल तले अष्टायध बाण बोलनी बाण संत पनाहण गुड़ गते जय जय होसी मय का सुर मर्दन आद अनाद गाद प्रते दुख दोग प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाहे दोष प्रदाहे अर्दल गाहे धोक हरे गंजन गुमाने अतुल ब्रह्माने संत माने आदंते जय जय होसी मै का सुन मर्दन सात प्रदन दोष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली जो जतीली तुन मते अष्टाय चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आदमृते डुग डुगी दमंक पाग बमंक भुजा फरंक सुध गते जय जय होसी मह का सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चचरा सुर मारण नरक निवारण पते धारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चार नरक निवार पते उधारे मुंड मथे जय जय होसी मै का सुन मर्दन धूम्र विध्वंसक आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्रदन दानव अर्दन बिडाल बधे सरदार विवरकन दुर्जन धरकन अतुल अमरखन धर्म धुजे धूमराज विध्वंसन सोम निपात निसोम्ब मथे जय जय होसी मै का सुन मर्दन आद अनिल गाद कथे तो प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते पसार जब जद्दब भूतन भय अनंत कहो जथा मत त्रैण तंत करता करीम का दर कृपाल अद भय अभूतन भय दयाल दाता दुरंग दुख दोकर हज नेत नेत सब वेद कहते कई ऊंच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाओ सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों ना सेवंत चाहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध सा सूरज सिवंत कई पलट सूरज सिद्धा कराए प्रभ एक रूप द्वय कह लखाए अनछज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंग अदवय अनास सब रोग सोगते रहत रूप अनभय काल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुग धोग हर दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजना जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पार ने भेद भरम जय रंग रूप ने एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अविचल अपार जानी न जाय जय रूप रेख बास तास कह कौन भेख कह नाम तास है कवन जाय जय सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चैन रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंद की करत पाल उर्दंग बिरा सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अनछज तेज अनभेज अदाग जल थल मही बंतन दुरंत जय नेत नेत निर्दिन उचरंत
पायो न जय जय पैर पार दी नान दोग दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत तो प्रसाद सवैये दीनन की व्रत पाल करे ने संतु बार गनी मन गार पक्ष पशु नग नाग नराधिप सर्व समय सबको व्रत पारे भोगत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम विचार दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत न हारे दाह है दुख दोखन को दल जन के पल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमा पद भेद कते भेद उचारे रोजी ही राज लोग राजिक रोग रोहान की रोजी न टारे कीट पतंग कुरंग भुजंगा भूत भवेक भवान बनाए देव देव खपे अहमे ना भेव लखे भ्रम शिव भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पात स्यो केन श्री पदमा पद पाए आद अनंत अगाध अद्वेग सो भूत भविक भवान वह है अंत विहीन अनातम अदाग अदोग अछिद्र अच्छ है लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रवह है दीन दयाल दया न दया कर श्रीपत सुंदर श्री पदमा पद ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देवहीन सने सबो तन नेह विरक्त अगह अच्छा है जान को दे अजान को दे जमीन को दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पद्मापत ले है रोगंते अर सोगंते जल जोगंते भव भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत खाओ तऊ तन एक न लागन पावे राकत है अपनो कर दय कर पाप समूह न भेटन पावे और की बात कहां कह तो सौ सो पेट ही के पट बीच बचावे जज भुजंग सो दानव दे अभे तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम अकाल पताल रसा चल जज भुजंग सब सिर न्यावे पाए सकी नी पार प्रवाह को नेत ही नेत वेद बतावे खोज सके सब ही कुजिया सुर हार परे रात न आवे नारद से चतरानंद से रुमनारी से सब हु मिल गायो वेद के देव ना भेद लगयो सब हार परे रात न आयो पाए सकी नी पार मा बसे सना सनातन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितो सब जग छायो वेद पुराण कदेव पुरा भेद निर्पाण सब बजहारे भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अन छेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न सोग न संग तिहारे आद अनाद गाद अभेग अद्वेग जपियो तिन ही कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए वदान महाव्रत धारे देश प्रयोग कर भेष तपो धन के धरे ना मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग

अत्र के चलैया छत छत्र के धरैया छत्र धारु के छलैया माँ सतरण के साल हैं दान के दिवैया माँ मान के बटैया अवसान के दिवैया हैं कटैया जम जाल हैं जोत के जितैया वृद्ध के मिटैया माँ बुद्ध के दिवैया माँ मान हूँ के मान हैं ज्ञान हूँ के गाता माँ बुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल माँ काल हूँ के काल हैं पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमालय जावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना किते बादे आरब के अराबी अराधे तेरे नाम है फरा के फरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पछम के पछमी पछाने निज काम है मर हटा मंगेले तेरी मन सो तपस्या करे दड़वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फेर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली की दिलवाली तेरी आज्ञा में चलते हैं रो के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले पापुंज को मलते हैं गोखा गुन गावे चीन व चीन के शीश नी आवे तिब्बती ध्याय दो देव के दलते हैं जिन्हें तो हे ध्यायो तीने पूरन प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है देव देव देव देवतान को सुरे दानवान को महेश गंग धान को अभेद कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साध अधीन कहियत है पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पहले पाछे पहुंचता है चींटी की चिंगार पहले ही सुनियत है केते नद्वार केते ब्रह्मा मुगुचार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है केते सासे राशि केते सूरज प्रकाशी केते मुंडे उदासी जो द्वार दहियत है केते महादीन केते व्यासे प्रवीर केते कुमेर कुमलीन केते जज कहियत है करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार है ना परावार पाइये ना पार पे अपार के बखानी है अद्वय अविनाशी परन पूरन प्रकाशी मा रूप होके राशि अनाशी कह के मानिए जंत्र हुना जहाँ जागी बाप हुना मायता की पूरन प्रभा की सो छटा कह न मानिए तेज हूँ को तंत्र के राशि को जंत्र के मोहनी को मंत्र निजंत्र कह के जानिए तेज हूँ को तरह के राशि को सारे के शुद्धता को घरे के शुद्धता की सार है कामना की खाने के साधना की सान है व्रक्त की बाने के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप के भूपन को भूपे के रूपों को रूपे कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रचक है के गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप के बुद्ध को विभूत के क्रोध को अभूत के अक्षय अविनाशी है काम को गुनिंदा के खुबी को दिहिंदा गनीमन गरिंदा के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काले के सतरन के साले के मित्रन को भोगते के वृद्धता की बासी है जोग हूं को जंत्र के तेज हूं को तंत्र के मोहनी को मंत्र के पूरन प्रकाशी है रूप को निवास के बुद्ध को प्रकाश के शुद्धता को वास के बुद्ध को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचाया ईमान को दिवैया जम जाल को कामना कर है तेज को प्रचंड है क्या खंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है ना नर है विश्व को भरने के आपदा को हरने के सुख को करने के तेज को प्रकाश है पाइये ना पार पारा वार हु को पार जागो की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगला हिमालय गावे हबसी हल्ला विध्यावे पूर्वी ना पार पावे आशा ते अनास है देवन को देव माँ देव हु के देव है निरंजन अभेव नाथ अद्वय अविनाशी है अंजन विहीन निरंजन प्रवीण के सेवक अधीन कटैया जम जाल के देवन के देव माँ देव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया मुहिया माँ बाल के राजन के राजा माँ साज हूँ के साजा माँ जोग हूँ को जोग है धरैया ध्रुम छाल के कामना करे के बुद्धता को हरे के शुद्धता की साधे के काल है कुचाल के शीर कैसी शीरा व छात कैसी छतरा नेर छपा कैसी छव कालिंद्री के कुल के हंस निशी सिहारू हीरा सी हुसैन आबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के परासी पलावगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगावानी के रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदी सी चांदा गढ़ कीरति हरी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमावगढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगावानी के सोहियत है हिमासी हिमालय हाव सी हल्ला बानेर
हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावती चंद्रमासी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंग धार वकांसी बिलंदाबाद गिरा तिहारी की उजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासी से के दोरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है, भखरी गंधारी गोर गाखरी कर देदा जारी पान के हरी तेरो नाम ध्यायत है, पूरा पलाव काम रूपा कमाओ सर्व ठार में विराजे जहां जहां जाइयत है, पूरन प्रतापी जंत्र मंत्र तापी नाथ कीरत हारी को ना पार पाइयत है, तो प्रसाद पादड़ी छंद अद्वैनाथ आसन

बन तान दुरंत खग मृग महान जत प्रफुल सुंदर सुजान फुल तंग प्रफुल्ल लहत मोर सिर ढुरै जान मन मत चार कुदरत कमाल।

तोज मोह रो संग बिरद करना निधान जाता प्रभु सुंदर सुजान बन तन महीप जल थल महान जाता प्रसो करना निधान जग मगध तेज।

0: श्री साहिबा महाराजा रणजीत सिंह जी शेर है पंजाब
1: बोले
0: श्री साहिबा महाराजा रणजीत सिंह जी शेर है पंजाब दी।

सत्य तेरे खंड सत्य ब्रह्मंड सत्य तेरे लो सत्याकार सत्य तेरे करने सर विचार सत्य तेरा अमर सत्य दीवान सत्य तेरा हुक्म सत्य फरमान सत्य तेरा कर्म सत्य निशान सच्चे तुदाखे लख करोड़ सत्य सप्तान।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फ्रेजंत विस्माद पवन सुमत पाणी विस्माद अग्नि खेडे बिडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणे विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पक्ष विस्माद भोग विस्माद सपद विस्माद साला विस्माद विजोड़ विस्माद

कुड़ राजा, कुड़ प्रजा, कुड़ सब संसार, कुड़ मंडप, कुड़ माड़ी, कुड़ बैसनहार, कुड़ सोना, कुड़ रूपा, कुड़ पननहार, कुड़ काया, कुड़ कपड़, कुड़ बपार, कुड़ मिया, कुड़ बीबी खप होए खार, कुड़ कुड़े न

नानक मेरे शरीर का कृत कृत बाहो जुग जुग फिर बटाई है ज्ञानी बुझेता है सतगुरु धर्म कृत बाहो तृतीय रथ जते का जोरा गिरथ बाहो द्वापर तपे का सदा गिरथ बाहो कल जुग्रत गन का

गुण चंगियाया तत सब को निवे आपको पर को निवे ना कोय तर तर जु तो लिए निवे सो गौरा होए।

पौड़ी छिते अंदर सबको वेख नजरी हेठ दिलाएंदा, आपे देवड़िया आपे ही करम कराएंदा, वडोड़ावड़ मेजनी श्रेष्ठ धंधा लाएंदा, नजर उपर टीजे करे।